निंदक का सुभाव है निंदा करना, उन्हें निंदा तो नहीं हटना। बेनती करिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तुसी साडे ते कृपा करो, कोई इहो जिहा उपदेश दिओ, निंदक साडी निंदा करी जाए ते असी बेखबर हो जाइए। आ बाणी पढ़ते हैं ना आपां, संत महापुरश भगत कहंदे ने, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदी जाओ सानू, सानू निंदिया दा कोई परवाह नहीं। महाराज साडे वल भी नजर मारो, असी निंदक दियां गल्लां दी परवाह ना करिए, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी कहणगे आ तैनू जुगत दसा, तेरा ये सुभाव बन जाए तन मन राम प्यारे जोग। इस तन भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, मेरा है ही कुछ नहीं, ते फिर निंदिया मेरी कितों होंदी है। फिर तू आखेगा भले निंदो लो, भले निंदो लो, फिर निंदकां तो डरेगा नहीं। हां सत्संगियो, निंदक कोलों डरन दी लोड़ नहीं है, निंदक तो सुचेत रहन दी लोड़ है। निंदा करे तो हमारा मीत, निंदक माहे हमारा जीत। निंदक साडा मित्र है भई, ओ किवें असी कोई भी काम करदे हां चित साडा निंदक वल होंदा है, भई जे काम विच रती जिन्नी भी कमी रह गई, निंदक दे हाथ ए कमी लग गई, उन्हें गल उछाल देनी है। असी अपने काम नू होर भी सवार लैंदे हां, साड़ी कामयाबी विच साड़े चंगे काम विच निंदक दा भी सहयोग होंदा है। किवें मेरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मां प्यो दे रूप विच सानू अपने चंगे पुत्र जान के सिख्या दे रहे। निंदिया छड के देख, तैनू सारे अपने मित्र लगन लग पैणगे। निंदिया छड के देख, तैनू कोई दुश्मन नहीं लगेगा। असी जिहदी निंदिया करदे आ ना, सानू वह दुश्मन लगन लग पैंदा है, अपना बैरी लगता है। प्रथमे छोड़ी प्राई निंदा, सतगुरां दा नाम दा बाण मेरे हिरदे बज गया है, हुण मैं लोकां दी निंदिया नहीं करदा, मैनू सारे मित्र लगदे ने, हुण मैनू इंज लगदा है जिवें निरंकार दा रूप, निरंकार दीआं रहमतां सभनां विच वसदीआं ने, मैं निंदिया नहीं किसे दी करनी।

नानक जुग में सुखवासी। से मुक्त से मुक्त पए जिन हत्या जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरभउ जिन हर निर

हर हर रूप समासी से धन जन हर त्याया जी जन नानक तिन वल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी तो

गुण गले अरहौ। ना हो जति सती नहीं पड़या, भूत मुकदा जन्म पया। प्राणवत नानक तिन की शरणा, जिंतु नाही विसरिया। आस्था महला च पंजवा, कई प्रापत मानक दिहोरिया। गोविंद मिलन किए तेरी वरिया, अवर काज तेरक ते न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पाप जल तारण के। जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, जप तप संग

परा मोर अच्छा निज कर ले करिए सावैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आस्था तो और भजन की रहे प्यासा।

जिस देहे सो पावे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बेटो जिस दियां इह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रूपी यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द घर सुभागे घर सुभागे शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंट को मारिया।

जाका सतगुर पूरा, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने

माता गंगा जी की सुखो, माता गंगा जी की सुखो, चानर मुनारे भरे। माता गंगा जी की सुखो, माता गंगा जी की सुखो, माता गंगा जी की सुखो, चानर मुनारे भरे। पंच में गुरा दी को, पंच में गुरा दी को, एक संतान है पंच में

पिता भी शहीदी मार, पिता भी शहीदी मार बैठे गुर गद्दी उते, पिता भी शहीदी मार, पिता भी शहीदी मार, पिता भी शहीदी मार बैठे गुर गद्दी उते, साजिया तखत जो, साजिया

नगर दे दुज लड़के आए बड़े वीर नगर दे दुज लड़के आए बड़े वीर नगर दे दुज लड़के आए बड़े वीर नगर दे वही बड़े वीर बड़े वीर नगर दे दुज लड़के आए बड़े वीर नगर दे

भक्ति कर ले, ओ भक्ति कर ले, गुरा ने अपना सुत बनाए, ओ भक्ति कर ले, गुरा ने अपना सुत बनाए, ओ ताकि जब सदा संगतार विच जाए, संगतार जगाए, ओ ताकि जब सदा संगतार

सतगुरु जी ने पूछा काका किहड़े पिंड तों आए जी। मैं वड्डे वीर आ करतारपुर दे नेड़े वसदा पठाणा दा पिंड इत्थों दा रहण वाला। कहिंदे खां तेरे माता पिता किथे हन? महाराज माता पिता मैनू कल्ले नूं छड्ड के संसार चों तुर गए, इस दुनिया विच मेरा कोई नहीं। फिर पैंदे खां जे तेरा इस दुनिया विच कोई नहीं, तेरा वाहिगुरु है, तेरा अकाल पुरख है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ते तू हुण गुरु नानक दे घर विच आ गए, अज तो गुरु नानक दा घर ही तेरा आसरा है, गुरु नानक दा घर ही तेरा सहारा है, तैनू होर किते धक्के खाण दी लोड़ नहीं। तैनू अज तो असी अपना पुत्र बनाउंदे हां। आखो प्यार नाल गज के सतनाम श्री वाहिगुरु। की गुरु हरगोबिंद साहब कोल पहला पुत्रां दी घाट सी? उन्हां कोल ते बाबे गुरदित्ते वर्गे बली पुत्र, गुरु तेग बहादुर साहब वर्गे धर्मी पुत्र मौजूद सन। पंज पुत्रां दे पितामा सन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, अते एक लड़की बीबी वीरो दे पिता सन। पर एक दुखी नूं वेख के उहदे दिल नूं धरवास देण लई, उहदे नाल हमदर्दी जाहर करन लई, किते उहदे दिल नूं ठेस ना वज्जे, उस बेसहारे नूं सतगुरां ने सहारा दे दित्ता, अपना सुत मीन्स अपना पुत्र बना लिया, ते बड़े प्यार दे नाल उसकी पालना पोषणा करनी शुरू कर दित्ती। उहदी खुराक दा सतगुरु आप ध्यान रखाउंदे, उहदियां कसरतां सतगुरु आप करवाउंदे, उहनूं योग दी ट्रेनिंग सतगुरु आप देंदे, उहनूं घोड़ सवारी सतगुरु आप सिखाउंदे, उहनूं तलवार चलाउणी सतगुरु आप सिखाउंदे, उहनूं तीरां दी वरखा दुश्मन ते करनी सतगुरु आप सिखाउंदे। बदामां दीआं बोरियां देसी घिओ दे टीन उहनां दे मूंह हर वक्त पैंदे खाल ही खुले रहिंदे। गुरु घर विच रहिणा, सतसंग सुनना, बाणी दा रस माणना, सतगुरां दे वचन सुनने, चंगी खुराक खाणी, दिनां विच ही पैंदे खां पुज के जवान निकलिया, चंगा नरोआ निग्गर शरीर, तंदुरुस्त काया, तंदुरुस्त शरीर, एडा बली सी। इतिहासकार कहिंदे ने कि पैंदे खां विच एडा बल सी कि उह अपने दोनों हथां दे नाल घोड़े नूं पहले दोनों पैरां तों चक के उतां खड़ा कर दिंदा सी। एडा बली सी पैंदे खां, जे सिक्का माया दा सब तों छोटा रूप उहनूं हथ विच लै के एक दो वारी मर देंदा सी, ते सिक्के दे उत्ते पए अखर अपने आप साफ हो जाया करदे सन। एडा बली जवान सतगुरु जी दा प्यारा जरनैल पैंदे खां अज पुज के जवान हो गया। सतगुरु जी ने इहदे विआह दी तैयारी कीती, छोटे मीर दीआं संगतां आईआं पठाणा दे घर, छोटे मीर विच वी सन। इहनां नूं पता लगा कि सतगुरां दे सारे जरनैल, सतगुरां दे सारे योधे सिख ही नहीं, उहनां विच पठाणा दे लड़के वी हन। इहनां पठाणा छोटे मीर पिंडियां नूं पैंदे खां बहुत पसंद आया। पुज के जवान फिर सतगुरु जी दा भरोसेयोग जरनैल, इहनां हथ बन के बेनती कीती, सतगुरु जी जे तुहाडी आग्या होवे, तुहाडा जरनैल पैंदे खां जवान है ते साडी कन्या जवान है, असीं चाहुंदे आ तुहाडी आग्या नाल, तुहाडे हुक्म नाल असीं अपनी कन्या दी शादी इस पैंदे खां जरनैल दे नाल कर दईए। लो सुणो प्रेम प्यार दे नाल छोटे मीर दीआं संगतां, छोटे मीर दे पठान गुरु हरगोबिंद साहब दे चरणां विच हथ बन के पैंदे खां दे नाल अपनी लड़की दा रिश्ता करन वास्ते विचारां हे इहो कर रहे हां।

लड़की जवान है सभी करो शादी तुसी पे देखा देना लबे असी मरने तेरे दातिया थक आए असी तेरे दर।

0: के खाने मापे बचपन की मर चुके सन। सतगुरां ने इन्हूं अपना पुत बना के पालिया, रजवी खुराक दिती, चंगी पोशाक दिती, चंगा कल्चर सिखाया, चंगी अकल, तुरना फिरना, बोली शैली सब कुछ सिखाया, हथियार चलाने सिखाए, पुज के जवान निकलिया, सतगुरु जी फौजा का जरनैल बनिया। अज विआह की गल फिरी तो सतगुरु आख्या तुहाडी मनोकामना जरूर पूरी होएगी। पेंडे खां दियां सारिया रस्म विआह दियां असीं आप पूरियां करांगे। ये पठान सतगुरु अगे इहो बेनती करदे जा रहे सन।
1: सतगुर मेरा बिच पर आम दे, आम दे अपनी शादी देर जाम दे। सतगुर मेरा बिच पर आम दे, आम दे अपनी शादी देर जाम दे। आप दे अपनी शादी देर जाम दे। अपने सेवकां दी आप लाज रख दे ने, बड़े बड़े संकटां नू टाल। तड़की जवान है सदी लड़की जवान असादी, पर शादी तुसी बैठे खा देना। लड़की जवान असादी, पर शादी तुसी

एक जरूरी सूचना 191 टोयोटा करोला फोर सिलेंडर गड्डी बाहर खलोती है तो उसकी लाइटां जग रही हैं, जिस सज्जन की भी होवे उसकी लाइटां नूं जाके बुझाउण की कोशिश करें।

0: कर शादी तुझे पे देखा देना लड़की जवान है सभी करो शादी तुझे पे देखा देना लड़की जवान है सभी करो शादी तुझे पे देखा देना
1: गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने इन्हां पठाणा दा रिश्ता प्रवान किया पेंदे खां जरनैल लई उस दा शगन सारियां रस्मां आप संपूर्ण करवाईयां अते उहदे धर्म इस्लाम द्वारा ही उस दे निकाह दी रस्म संपूर्ण होई पेंदे खां दे उत्ते गुरु साहब ने बहुत वकार कीते इस दे घर औलाद होई लड़की होई उस दे विआह विच वी गुरु साहब ने सहायता कीती इहदा जवाई अरमर खां बणिया इस तों अगला इतिहास अगले दीवाना विच वर्णन किया जाएगा पेंदे खां ने जो एहसान गुरु घर ने उसके परिवार उत्ते किए उन्होंने एहसाना का बदला किवें चुकाया आने वाले समय च इन्हां प्रश्नों उत्ते विचार करांगे बख्श छुट्टियां बुलाओ प्रेम सहित फतेह सारिया संगतां का बहुत धन्यवाद जिन्हां ढाडी हथे लई बेहद सत्कार भेजिया सतगुरु चढ़दियां कलां च रखे हाजरियां प्रवान करे गुरसिक्खी जीवन बख्शे सुनो अगला प्रोग्राम सत्कारयोग बाबा जी तो प्यार सहित फतेह बुलाओ जी गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह
2: गुरु रूप गुरु प्यारे सत्संग जी वाहिगुरु खालसा वाहिगुरू जी की फतेह आप जी ढाडी वारा राही गुर इतिहास सरवण कर रहे सी ढाडी जथा ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी बैंस जी के जथे पासों तिना का बहुत बहुत धन्यवाद है हुण आप जी नू कुछ समय लई भाई हरभजन सिंह जी ढिल्लों जो कवि हैं आप जी नू कविता राही गुर इतिहास सरवण कराउणगे आओ उन्हां पासों कविता सरवण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

खालसा जी, खरिया खरिया गल्ला सुन जत्थेदार बुढ़ा सिंह नूं होर ज्यादा गुस्सा चढ़ गया। सिखी अणख तरलों मच्छी हो उठी, सोचण लग पिया मुलाका सिंह ठीक ही आंदा है, साडे बिना गुरु घर की राखी कौन करूगा, असी हरिमंदर साहब नूं किहदे गोचरे छड़ाया, सिर वार के ही धर्म स्थान की राखी की जा सकती है, कल्ला नाल नहीं, धर्म की पूजा करने वालों नूं धर्म वास्ते सिर भी वारने पैंदे ने। पलां विच ही जत्थे दे सारे सिंह सूरमे इकट्ठे कर जत्थेदार बुढ़ा सिंह ने इउं ललकारिया।

चारे पासे हाहाकार मच गई। लगदे हथ महताब सिंह ते सुखा सिंह ने जो भी अगे आया झटका दिता। पापियां दे सिर मतीरिया वांगू सिंघां दे पैरां विच रुलण लगे। हरिमंदर साहब विच भाजणा पै गईआं। जिधर नूं किसे दा मूंह होया उधर नूं भज तुरिया। कलगी तर दे सिंह पापी मस्से दे सिर नूं बच्चे उत्ते टंग घोड़िआं ते हो सवार बीकानेर वल इउं जांदे ने।

सुखमनी सावर धन गुरु अरविंद देव जी महाराज का फरमान कई करोड़ा ने भूल प्रे सोकर मिर्गा। इतनी गल स्पष्ट है कि मनुख योनि तो बाद ही कोई भूत प्रेत बन सकता है, देव देवता बन सकता है, पशु नहीं बन सकता। पशुओं को शरीरक बल तो है, बौद्धिक बल नहीं है। तो बौद्धिक बल ना होने करके अपनी शरीरक शक्ति ना उसारू कमां में खर्च कर सकते हैं, ना ही बर्बादी ये तबाही दे खर्च कर सकते हैं। किसी भी पशु ने संसार में इतनिया तबाहियां जन्म नहीं दिता जितना मनुखी दुनिया में मनुख ने तबाहियां जन्म दिता। क्यों? मनुख दे कोलो भावे शरीरक बल तो इतना नहीं है जिन्ना कि पशुओं को है, पर बौद्धिक बल ज्यादा है। बौद्धिक बल ज्यादा होने कारण करके ही हाथी जैसे नो ये अंकुश के थले रखता, शेर नो पिंजरे च बंद कर देता। बड़े बड़े जानवर उठ बैल जैसे नो इसने नकेल पाई हुई है, सिर्फ बौद्धिक शक्ति के आसरे। प्राकृतिक शक्तियां भी इसके काबू च ने, अग ते पानी पाउण भाव बना, पता नहीं कितने ये उसारू कम उस तो लै रहे। वर्ष के मनुख दे कोलों बौद्धिक बल ज्यादा, लखा करोड़ा पशुआ नालों भी मनुख कोल दिमागी शक्ति ज्यादा, पर यही दिमागी शक्ति जो किधरे बर्बादियों खर्च हो गए। तो फिर इस मनुख तो जो बर्बादियां जन्म ले दिया ने वो अज तक किसी पशु ने नहीं की दिया और ना ही कर सकता। हिटलर, मुसोलिनी, हलाकू, चंगेज खान मनुखी दुनिया पैदा हो सकते हैं, पशुओं दे जाए, पर श्री राम, श्री कृष्ण, धन गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद साहब मनुखी दुनिया आ सकते हैं, पशुओं की दुनिया। जीवन की महान शिखरता छोई जा सकती है मनुखा शरीर प्राप्त करके, और निवान तो निवान तल दिख जाया जा सकता है मनुख शरीर धारण करके। ये मनुख की मर्जी है, जीवन जाएगा सही किसे पास है, अगे ना गया पीछे जाएगा, सजे ना गया खब्बे जाएगा, लाजमी जाएगा। जैसे दुध है, अगर इसमें घ्यो ना बनाया, दही ना बनाया, खोया ना बनाया तो पया पया फटेगा, लाजमी फटेगा। दुध का घ्यो बन जाना इस शिखरता नु छूना है, अगे चला गया। दुध का फट जाना क्योंकि पीछे चला गया, फिर पानी हो गया, फिर नाकारा हो गया, फिर फिजूल हो गया। इसी तरीके नाल मनुख का पिछे चला जाना एक भ्रष्ट होना, और मनुख का अगे चला जाना परमात्मा हो जाना एक महानता नु प्राप्त करना। और गुरबाणी प्रेरदी भी अगांखू तरां पिछा फेर न मोड़ा, नानक सिंध एह आवार बहुड़ न होवी जन्मड़ा। अगां वे और अगे वेख के चल, जन्म मरण के छुटकारा हो जाएगा, वो जीवन प्राप्त होवेगा जो सदीवी जीवन है, वो रस प्राप्त होवेगा जो महारस है, वो आनंद प्राप्त होवेगा जो महा आनंद है, और शक्ति प्राप्त होवेगी जो परम सदा है। लेकिन शर्त है अगां चले, अगां चले। जैसे जमीन देते करोड़ा अरबा मनुख ने भटक दी हुई भूत प्रेत जूना भी करोड़ा खरबा अरब ने, कई कोट जख के नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत चूकर मिलकर। जैसे मनुखी दुनिया के दर्जे ने
प्रसन्न है, प्रमोद है। फिर एक साधक है, साधु है, निर्मल कर्म ने, पर अजय शिखर दानों नहीं सोया। फिर एक अजय मनुख की तरह जी रहा है, चौक पे खड़ा है, अगे जा नहीं सकया, पिछे मुड़ना नहीं चाहता, उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। असी इसको कह देने इसके अंदर शराफत है, इसके अंदर इंसानियत है, इसके अंदर मनुखता है। मनुख के अंदर मनुखता का पैदा होना कोई बहुत वड्डी गल नहीं, मनुख के अंदर परमात्मा पैदा हो जाए और लोग कहन इसे परमात्मा जैसे, तां कोई मनुखी जन्म का लाभ समझ लो और लाहा अगां वाधू कम समझ लो, नहीं तो मनुखा जन्म का भी लाभ नहीं है। भाई परापत मानुख दे होरिया गोविंद मिलन सी तेरे तेरी बरिया। कवि तुलसी भी कहने ने बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि बड़े चिरां तो बाद प्राप्त होया। करोड़ा दे करीब भूत प्रेत सुकर मृगाच ने, भूत जो पशुआ की तरह जींदा रहे, पिशाच जो पशुआ तो भी थले चला। जितनी लजता जितना संकोच पशुआ ले है, कितना भी उस दिन पिशाच हो गया, प्रेत हो गया, बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। इसी तरीके देव योनिया देवते ने, कोई महादेव हो जाते हैं, कोई देव हो जाने, केते देव दानव मुन केते केते रतन समन। लेकिन चाहे देव है कि चाहे महादेव है, परमात्मा होने लई ते शरीर चाहिए, मनुखी तन चाहिए। भूत है, प्रेत है, अगां जान लई या इंद्रियों का रस माण लई मनुखा तन तो चाहिए, शरीर चाहिए। तो दोहां दे अंदर लालसा मनुखी तन दी रहती है, क्योंकि एक ऐसा वाहन है जिसके आश्रय से यात्रा हो सकती है। भूत प्रेत रुके हुए ने, देवते भी रुके हुए हैं। हाँ, जिथे दुष्ट भक्त के मनुख बैठे होवन उथे भूत रूहां प्रेत रूहां का वासा हो सकता है, और जिथे सत्संग चल रहा है, हरी जस चल रहा है, साधु जन बैठे ने, जरूर उठे देवते होंगे, जरूर उठे देव योनियां आउंदिया ने। हिंदू जगत दे सिख प्रचलित गल है, जिथे रामायण की कथा होवे हनुमान आउंदा है, ते हनुमान महादेव मन सकदे, ते महान देव महान देवता उथे हो सकदा। राम का भगत सी, राम का प्यारा सी। इसी तरीके दे नाल जिस जिस संपर्क आदि चरित रह के, जिस जिस अवतारी पुरुष नूं अपना रैबर मन के उन्हें जीवन अगां तोरन की कोशिश की थी सी, पर शिखरता नूं छू नहीं सकया, लिहाजा सज्जे मुड़ गया, देव योन प्राप्त होई। तो जिथे जिथे सत्संग होवेगा, गुरबाणी का कीर्तन कथा होगी, जिथे उपनिषदां की विचार होगी सत्संग होगा, जिथे नमाजियां का इकट्ठ होगा कुरान की तलावत होगी, ये रूहां उत्थे हो सकदियां ने जो देव रूहां कहलांदियां ने, महादेव रूहां कहलांदियां ने। और इन्हां दी एक मंग आउंदी है, हे प्रभु हुण सानू भी मनुखा तन दे, ताकि रहिंदी यात्रा नूं संपूर्ण करिए, पूरा करिए। पर इन्हां नूं छेती जेही नहीं मिलदी, महादेव जैसी परम चेतना नूं जन्म देण वास्ते कोई महान मां चाहिए। जैसे गुलाब दे फुल बंजर जमीना च नहीं पैदा होंगे, काटपूस से पैदा हो जाते हैं, कोई महान गोद ही महान चेतनावां नूं जन्म देती है। आम तो किसी थां तो भी जन्म ले सकते हैं, काटपूस से सब जगह पैदा हो जाती है, गुलाब हर जगह नहीं पैदा होगा, चंदन दे वृक्ष हर थां ते नहीं लगनगे, कमल
ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਵ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਰਤ ਮਾਤ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਸਰੀਰਕ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ। ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਦਰਖਤ, ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਵ ਯੋਨੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਪਿਤਾ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਰੀਰਦਾਰੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਸਾਈ ਸੀ, ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਵਸਾਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਪਿਤਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਦੇਵਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲ ਸੰਯਮ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਮਲਿਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਸਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
भूत प्रेत के साथ एक ही चिंतन देने भूत सिंह कह लीजिए थोड़ी बहुत मनुखता है, प्रेत उसको थल्ले के साथ उसको ही थल्ले। शैतानियत का मुजस्मा 2.5 करोड़ बंदियां का कातिल है हिटलर, बस्तियां नु उजाड़ के रंगदा सी हलाकू, शहरां नु कब्रस्तान बना के लंघदा सी चंगेज खान। इन्हां दा कोई छेती जन्म नहीं होंदा, कोई बहुत डायन ते कसायन मां चाहीदी है तां ही आ सकदे ने। इस तरह दीआं चेतनावां बहुत लंबे समय तक हालात विच भटकदीआं ने, ते जैसे जमीन ते करोड़ां मनुख ने हालात करोड़ां ही प्रेत ते साथ ने कई कोट जत किनर ते साथ कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा कई करोड़ पवित्र रूपा ने अपवित्र रूहा ने जो हला देते हैं। एक दौर से पवित्र रूहा का आम जन्म हो जाता है, समा लंघे पवित्र जूना तो हम तरस रही है। इस दे ही को सिमरे दे भूत प्रेतों का ही जन्म हो गया, क्योंकि हम माड़ी मां दुष्ट मां बारमुखी मां कसायण मां डायण मां पृथ्वी से उपलब्ध है। भूतों का जन्म हो गया, प्रेत आम रोज पैदा हो रहे हैं। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रमाण, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार उच्च जनूरा धी जनूरी जोरो जिन्ना दा सकदा। भूत पैदा हो रहे ने जिन भूत, तिया पैदा हो रही ने जिन भूत, जो बाप के काबू विच नहीं, समाज के नियम तोड़ते हैं, कानून पकड़ते हुए नहीं आते। ऐसा दुष्ट बिरतियां वाले जी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि परिवारिक जीवन भ्रष्ट हो गया है, कि नक भ्रष्ट हो गया है। महाराज बड़ा सुंदर जो है प्रवान कर देने, रन्ना होनिया बोदियां पुरख होए सजाद शील संगम सुख बनने खाना खाज अखा। सरन गई घर आपने पट उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है पावर न सच्चा वा। कलयुग इस ढंग ढंग परिवारिक जीवन जीया जा रहा है, रन्ना होइया बोदियां बोदियां तो मराद अत्यंत चन अत्यंत और सारी चंचलता सारी दिमागी शक्ति ला रही शरीर की नुमाइश शरीर की प्रदर्शनी। अजोकी स्त्री कोई अपनी आत्मा नु सुंदर नहीं बना रही, अपनी चेतना नु कोई सुंदर नहीं बना रही, शरीरक चौपन नु वधाव चढ़ा के जगत के सामने पेश करना, बस इससे की झुकी हुई है, इससे की लगी हुई है। शरीर तो अगे इसका ध्यान ही नहीं देता। इस वास्ते महाराज कहने अत्यंत चंचल हो गई अजोके युग दी स्त्री। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है, शिकारी नु कहते हैं। कि मनुख इस तरह की प्रदर्शनी करने वाली स्त्रियों के शिकार विच रहिंदे ने, वो तो शिकारी बिरती हो गई। इस शरीर की नुमाइश विच जुट गई, दूजा इस तरह के शरीर की तलाश विच जुट गया, जैसे शिकारी शिकार लभदा है। तो फिर जीवन परिवारिक ही होगा, एक शिकारी है तो दूजे नो कि जाल चंगी लग रही है, तो पछारे होया चुगा जो भाई दे आले दुआले चंगा लग रहा। भ्रष्ट हो गई स्त्री, भ्रष्ट हो गया पुरुष। जिस परिवारिक जीवन को जिस औलाद ने जन्म लेना है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कल्ले अंदर नानका जिन्ना का अवतार।

अनुसार अगर मनुखा तन प्राप्त हो गया जब इसको एक लक्ष्य है अगाम जाना अगाम जाना अगाम जाना सगिर घाटी मददगार गुरु मददगार गुरु है सत्संग है तेरे सत्संग का सहयोग प्राप्त हो जाए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और मनुख अपनी सारी बौद्धिक शक्ति पर चरण में लगा गए तो एक दिन दूर नहीं मनुख ही परमात्मा हो जाएगा थले रह जाएगा जीवन पशुओं का मनुखों का थले रह जाएगा जीवन देवतियों का थले रह जाएगा जीवन भूत ते प्रेत सिंहासन पे जा बैठेगा ते मनुख केड़े सिंहासन पे जो परमात्मा का सिंहासन है राम का सिंहासन है अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं साथ राम कबीरा एक बय है कोई न सके पछानी राम कबीरा एक बय है कोई न सके पछानी इस तरीके जीवन का प्रकट होके जीव का भटकना खत्म हो जाए विराजमान हो जाता है बस इस तो ठीक का जरा जगत है उसी मन इस तो सज्जे खब्बे का जरा जगत है उसी पवित्र ने उस प्रेत ने और संत का मनुष्यता तो जरा जगत है पशु ने कीड़े मकोड़े ने वही वनस्पति है मनुखा तन प्राप्त करके इसकी मर्जी है अगा जाए पिछा जाए और बार बार गुरु तेग बहादुर साहब समझाते हैं अजहू कर बिगड़ो नहीं जो हर गुण गा अजे भी तेरा कुछ नहीं बिगड़िया अजे भी तू बुलंदियों छू सकता है अजे भी तू शिखरता छू सकता है और परमात्मा का स्वरूप बन सकता है और जीवन की लक्षता प्राप्त जो है कर सकता है बहुत प्रेम सिर्फ वो रूहान है जो काफी लंबे समय तक तन प्राप्त नहीं कर दिया क्यों कि तन प्राप्त हो सके उस तरह के संस्कारों वाली दुष्ट मां दुष्ट पिता उपलब्ध नहीं क्योंकि अज के दौर काफी उपलब्ध ने तो हालात हूं भूत प्रेत से थोड़े रह गए हैं हालात देवत्या की तादाद बढ़ गई है देवत्या के जन्म छोटे हो रहे हैं तो ही कारण है किस देवी को हिमरे देव देवते हैं इस देवी की तलाश देखने मन देखने लिहाजा इस देवी लगी देवते तरसे पे ने देवी अगर प्राप्त हुई है तो परमात्मा होने लगी परमात्मा बनने लगी परमात्मा के सिंहासन से बैठने लगी इसके अलावा जिंदगी का होर कोई लक्ष्य नहीं जिंदगी का होर कोई मनोरथ नहीं सतगुरु मनोरथ की पूर्ति दे सहायक होवन मददगार होवन और जीवन लक्ष्य जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो

ਐ ਸਚ ਕਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਐਥੇ ਓਥੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਤੈ ਪਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਹਿਲ ਕਰ ਪਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਬਣਾਵਣਿਆ ਸਭਨਾ ਪਿਰ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਊਚੋ ਊਚਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਏ ਇਹੋ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅੰਤ ਵਿਗੁੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੋ ਜਾ ਗਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੋ ਜੀ ਪਾਵਣਿਆ ਅਪਿਓ ਪੀਏ ਸੋ ਪਰਮ ਗਵਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਰੱਖਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਉਪਾਏ ਸੰਦੈ ਲਾਏ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਰਿਜਕ ਆਪ ਅਪੜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਚ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਪਰਖਾਇਆ ਜਿਨ ਸਚ ਪੱਲੇ ਸਚ ਵਖਾਣੇ ਸਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਪ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਚ ਦੇੜਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਚ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਚੋ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸੱਚੇ ਸਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਲਵਿਖ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣਿਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭਦੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾਵਣਿਆ ਹਰ ਤੁਧ ਬਾਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ ਤੈ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਹਿੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਸੀਜਸ ਦੇਹਾ ਅੰਦਿਨ ਸਾਰ ਸਮਾਲ ਹਰ ਰਾਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹੇ ਸਮਾਵਣਿਆ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਪਨ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਕਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਸਹਿਜੇ ਸਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੂਜੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਜੈ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੋਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੇ ਸੁਧ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਾਖੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੈ ਅੰਦਿਨ ਮਾਤੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਮਾਇਆ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਊਚੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਵੈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵੈ ਸਾਚੇ ਜਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ ਸੱਚੇ ਬਾਜੋ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਆ ਦੂਜੈ ਲਾਗ ਜਗ ਖਪ ਖਪ ਮੂਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕੋ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪੇ ਤਰ ਦੇਖੈ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗ ਦਿਨ ਆਪੇ ਕਾਰ ਚੜਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਜੀ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਚਖ ਡੀਠੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੈ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਨਾਵੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਤੁਧ ਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਰਜਾ ਕਬਹੂ ਸੱਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ ਲਾਵਣਿਆ ਏਕੋ ਵੇਖਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸੂਖ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਲਰ ਤਿਆਗੈ
मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुपने सुख न पावणिया, अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे पै अंदर, पै मार परम चुकावणिया, परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया, सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तत न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया, हों वारी जियो वारी, निरपौ मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौजल सब तरावणिया, रहाओ मन मुख मुग्ध करें चतुराई, नाता तोता छाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावणिया, मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बूझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया, सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया, रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सह सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया, जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहजे सुख समावे, हों बलिहारी सदा चिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया, सच्चा सच्चो सच पति जै, गुर प्रसादी अंदर पी जै, बैस सुथान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया, जिसनु नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोभा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जी ओ सफलियो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस चिखा लहावणिया, हो वारी जियो वारी, सच संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर सबदी हर गुण गावणिया, रहाओ सतगुर सेवी सबद सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे सोभा पावणिया, बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया, एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जा हो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया, बिन सतगुर क्यो ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहा, सहजे सहज समावणिया, गुरमुख हो वैसो इक क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया, सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया, हों वारी जियो वारी, हर गुण अंदिन गावणिया, हों तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया, रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया, पाओ भोजन सतगुरु तुथे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावणिया, सतगुर ना सेवे मूरख अंध गवारा,
फिर ओए कित्थों पाइन मोख द्वारा, मर मर जमै फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। शब्द है साब जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाइन नौनिज नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत्संगत बै हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे फूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वड्याई दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलानी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हों वारी जियो वारी हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाये सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जे ही मनसा कर लागे ते हा फल पाए, सतगुर दाता सबना वथू का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हों मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हों मैं ममता सबदे खोवे, अंधिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बक्से मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम विद पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हों वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुर मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उर्धारे, सच रते सदा बैरागी हों मैं मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविद मनसा त्रिविद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके, चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उसापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणिया। हों वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी, सो निगुरा जो मर मर जमे निगुरे आवन जावणिया। तिन करते इक खेल रचाया, ताया शरीर है विच सब किछ पाया, शब्द भेद कोई महल पाए महले महल बुलावणिया। सच्चा साओ सच्चे वन जारे, सच वणन जै गुर हेत अपारे, सच विहा जै सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया।
बिन राशि को वट क्यों पाए, मनमुख पूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावणिया। एक सच वणन जै गुर शब्द प्यारे, आप करें सगले कुल तारे, आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावणिया। अंतर वस्त मूड़ा बार पाले, मनमुख अंधे फिरे बेताले, जिथे वस होवे तिथो कोई न पावे, मनमुख परम कुलावणिया। आपे देवे शब्द बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे सुन सुन त्यावणिया। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर के तो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी, सतगुर कह पाए पावणिया। हों वारी जियो वारी आप निवारणिया, आप गवाए ता हर पाए, हर स्यों सहज समावणिया। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन पागा गुर पाईए नाही, सबदे मेल मिलावणिया। गुरमुख अलिपत रहे संसारे, गुर कै तकिए नाम आधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया। मनमुख अंधे शुद्ध न काई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावणिया। एहो जगवाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा समाले को नाही खाली, जेही वासना पाए तेही वरते, वासु वास जनावणिया। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे, बिन गुर सांत न पावणिया। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुकम पछाणे, जेहा अंदर पाए तेहा वरते, आपे बाहर पावणिया। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लए सो निर्मल होई, नानक नाम वसै कट अंतर, जिस देवे सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख दवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावणिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आप सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पियावणिया। सो किछ करे जो चित न होई, तिसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे, त्यो मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी सो चित लाए, अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी सबद सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत पियावणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब भुख लै जावणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पियावणिया, रसना रस चाक सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक स्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कणेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रता, अमृत सह सुनावणिया। मनमुख पूला दूजे पाए खुआए,
नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन सिरजी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सबद सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हों वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्यायन से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन डीठी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन ने चल, निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सच्चो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाले सेवड पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पर परथा के सांत ना आई, तृष्णा जाले सुध ना काई, बिख बिहाजें बिख मोह प्यासे, कूर बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरते, मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावणिया। हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे है प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्म पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे ता त्रिभुवन सूझे, फिर ओ मरे न मरना होवे, सहजे सच समावणिया। माया में फिर चितना लाए, गुर के शब्द सद रह समाए, सच सलाहे सब कट अंतर, सच्चो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच ने चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सच्चो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर शब्द सलाही, शब्दो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, हों मैं मैल गुर शब्दे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे शोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो है,
निर्मल नाम मन तन मोह है, सच नाम मल कदे ना लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले थाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सोहै, अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर कह पै उजल हौ मैं मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करें दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर कह शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, सबदे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरमुख भगत थाए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण फिर बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाई है, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सलाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवे से सदा सोहे, सोबा सुर सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदे सलाहन, रंग राते भगत करावणिया। सबको सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूके फेरा, जा तुद पावे ता नाए रचावे, तू आपे नाओ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक्कस त्यों लिव लागी सधी, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निद नाम वसया मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया, सबदे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सलाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक स्यों मन रहा समाए, मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो सलाहे, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम व

क्या हो तो क्या भगवान, क्या हो तो क्या भगवान, जो नजर करे जिस पावे नानका, काजू हंस करे अरे सारी गुण अपने, देवहारी तन वाला जिन मानस ते देवते किए, जिन मानस ते

परे प्यार अमृत वेला सटनाओ बढ़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नजरी मोख द्वार नानक में जाइए सब अपे सुचार थाप्या न जाए कीता न होए अपे आप निरंजन सोए जिन से व्या तिन पाया मान नानक गावे गुणी निधान गावे सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रास माई गौर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जीव का एक गाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जित पावा बिन पाने के नाई करी जिती सिर च पाई वेखा बिन करमा के मिले लई मात बिचरतन द्वार मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुगचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए ना चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस की जग दे जे तिस नर नी तां आप पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे सिहा कोय न सुधी जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया तत् तवल आकाश सुनिया दीप लोप ताल सुनिया पोय न सके काल नानक भगतां सदा विगास सुनिया दूर पाप का नाथ सुनिया ईश्वर वर्मा इंद सुनिया मुख सलाहन मंद सुनिया जोग जुग तन भेद सुनिया शास्त्र सिमत वेद नानक भगत सदा विगास सुनिया दूर पाप का नाश सुनिया सत संतोष ज्ञान सुनिया सत का

साई पढ़ी का तू सदा सलाम तनिंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग में।

विराज है, मृक्ष रूप है, त्रिलोक्य विभूत है, प्रपुक्त प्रवाह है, सुयुक्त सदा है, सैज रूप है, पेदी रूप है, समस्त प्राज है, सदा सर साज है, समस्त स्थलाम है, सैबल काम है, निर्वास रूप है, अगाध अनूप है, उयंगाद रूप है, अनाज रूप है, अनंगी नाम टपंगी चगामी वर्ण प्रवादे गंजे अगादे सुपांग सर्पागे सुसर्व अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है, शुद्ध है, शुद्ध है, केदार कंपनास है, पृथ्वी प्रवास है, नियुक्त प्रवाह है, सुवं सदा है, विपुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनुरूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, क्या त्रिशंत अपंग है, अनंग है, तीर्थ है, अजेक है, अपर्म है, कर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अवय है, अपूत है, अधूत है, अनाश है, उदास है, अदंध है, अवंध है, अपक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, चिंत है, समित है, लिख है, दिख है, अलेख है, पेख है, अडम है, गण है, सम है, गम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर प्रछन तर प्रत्या सर्व हंकर सर्व निंतर सर्व क्षेत्र सर्व ज्ञाता सर्व हत्ता सर्व कर्ता सर्व प्राण सर्व प्राण सर्व कर्म सर्व कर्म सर्व युक्ता सर्व मुक्त सर्व सावल छंद प्रपश्चात नमो नरक नाथे सर्व प्रकाशे रंग स्वरूपे पंगम पूते परमात्म परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निवाद विपूते अनंगी नाम तपंगी प्रकाम निपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न क्षत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं शरीक है हम तो अमीक हैं सदैव प्रवण है अजय है अजा है भक्ति छंद प्रसाद के यारा यहूर है के हाजर हजूर है हमें सुख सलाम है स्वस्थ कलाम है के सहव दिमाग है के सुन चराग है के कालम कामल करीम है के राज करीम है के रुजी दहिंद है के राज करहिंद है करीम कमाल है कमाल है के हसन जमाल है गनीम खराज है गरीम नवाज है हरी फुल सखन है हिरासल सखन है पलंक उपनास है स्वस्थ निवास है गंदी गनीम है जायक दहीम है समास्तल जुबा है के सहव करना है के नरकम परमार परनाश हैं व्यस्तुल निवास हैं के सर्वगुण हैं के हमेशल रोवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तल अजीज हैं प्रंग प्रम ईस हैं समस्त अजीश हैं जैसल अलेख हैं हमेशल अलेख हैं जमीलुल जमा हैं मीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमतो सुवास हैं क्या ये स्वरूप हैं जब तो विभूत हैं के हम तो प्रसाह हैं के आत्म प्रवाह हैं के अचल अनंग हैं के हम तो पंग हैं मत प्रशांत तब प्रसाद मनमान प्रणाम गुणगन मदाम अरबर गांज हर नर पर पांज अनगन प्रणाम मनमन सलाम हर नर अखंड वर नर मंड अंतनाश मनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल तन मदाम अंश अंग सुन पंग उपमा पार गति चार जल थल महंड अमंड जिस विश अपंड जल थल महंत जिस विश बेहंत अनुभव अनास तृत तारत रास आजन वह शाह एक सुधा ओंकार कृष्ण नाल कल्पन ख्याल गुरुवर काल कर नाम चित्र नाम।

अन्ना अन्न चाज गात अन्न रंग गात अन्न टूट पंडार अन्न अनुठ अन्न अठरण अन्था अपार अतीत धर्म अतीत कर्म अनुग्रंथ अनंत दाता महान था उन्होंने संतों प्रचार कुना ले हैं अर्का ले हैं सुखंड है मैं मंदिर है जिसे स्वयं परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है जग के कर्म है जग के कर्म है मन मान्य है जग जान्य है सर्व पर है सर्व कर है सर पासे हैं सर्वनाशे हैं करणा कर हैं संबर हैं सर्वेश्वर हैं जुगेश्वर हैं परमेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंड हैं कलखंड हैं पाते पर हैं करणा कर हैं अजप्पा जप हैं थप्पा थप हैं कृत्ता कृत हैं मित्ता मित्त हैं मित्ता मित्त हैं करणा कृत हैं अकृत्ता कृत हैं तारणी कृत हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृत्ता कृत हैं मित्ता मित्त हैं अजबा कृत हैं अमृता अमृत हैं निर्णायक हैं कल खाई खल कायिक हैं दिसंबर हैं कुरनाले हैं नितनायक हैं सरपायक हैं तो पंजन हैं अर्गंजन हैं रक्तापन हैं जप जपन हैं अकलन कृत हैं कर सर्व कृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्मभस हैं जस के जस हैं सुजंग प्रयाति शांत नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो कौतेजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो बीज बीजे नमो राम दासम तामसम शांत रूपे नमो परम तंत्र तंत्र स्वरूपे नमो योग जगेश ब्रह्म नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रिंद्रे अनारंग रूपे कलंकंग रूपे लंकंग लंके अलंकार अलंके नमो आस अक्षे नमो भंके अपंगी रूपे अनंगी नान त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे इक्षत्रीशन अजे अले अपे अवे अवजू अनासकाश अगंज पांच लख पख अकाल दयाल लेसे अनाम काम अघां डान आसे परमासे जोनी मोनी न राग नरंगे नरूप न लेखे कर्म कर्म लंगन दिए लेखे यंग प्रया दे छंद नमस्तुल नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजला नामे समस्त निवासे निरकामं बपूते समस्तल समस्तुल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदामं बपूते सदा सत्यानं संतरंग प्रणासी करीमल कनिंदा समस्त निवासी जाय विभूते जाय नीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पोते सुपंग स्पंग सर्वदा सर्वजुक्ते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे पंगं बपूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगम भूते एक ओंकार सतगुर प्रसाद सप्रसाद रहिए पातशाही दाखी श्रावण शुद्ध समूह सदान के देख प्रयोग कर योग जटी के सूर सदारदंग शुद्ध सदायक संत समूह ने एक मटी के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रती के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत बौन के गौन को जात नवारे पारी पियान के भूत पलिविद नियाम शीत न जात बिचारे इतने पै तो कहाँ का पै पूपत अंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सर देश इंसान को बाज ढोल में गंग नगारे गूजत गूढ़ ज्ञान के सुंदर है हिस्ट है राज है राज हजारे पूत भेख भगवान के पूवत कौन करे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताप सिदारे तीर्थ नाम दया दाम दान सो संजम नेम अनेक सेखे वेद प्राण कतेव कुरान जमीन जमान समान के तेखे पौन हार जती जत तार सब सब चार हजार के देखे श्री
भगवान पजे बिन पूपत एक रती तिन एक न लेखे शुद्ध सपा ग्रंथ दवा सो साज सुना दर्जान गलेंगे पारी जुबान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर रीम मरोरम वासन मातम तंगन मान मिलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन क्या जहां नहलान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार अब चारे सार की तार छैया तोर देश मिलांद वासन मातिक ध्यान के मान मिलैया गाड़े ग्रान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया सार श्री सब को सरनाई जांच अनेक सो एक दुरैया धान देख लिंगन साचर पूत वेख भगवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप खपेंगे पुन पर तापन बाँ जैत पापन के व पूज खपेंगे सास मुँह प्रसन्न भरे जग सब पर सवे अलो जग अवलोक जपेंगे मान मिंद गिरिंदन रागत ज्यों तो लोक को राज करेंगे कोट स्नान जात के दान अनेक संबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सच्ची पर अंत प्रदेशम फास करेंगे जे नार श्री पक के प्रस हैं पग ते नर फेर न दे करेंगे जहाँ पे होते दो लोचन मूद के बैठ रहे हो पग ध्यान लगाए हो नहा फिर दिए सो सात समुद्र लोग गए पलोग गए बात किए बख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैठ बतायो साथ कहो सुन लियो सवे जिन प्रेम की ओ तुम ही प्र पायो काहू ल पहान पूज करियो से काहू लिंग गले लटकायो काहू लिखियो हर वाची दिशा में काहू पछा को सी सुनवायो खूब तान को पूजत है पस कूम तान को पूजन पायो कूल क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूल क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो पातशाही दसवीं का विवाद चाओ पई हमरी करो हाथ जो रक्षा पूर्ण होए चिटकी शाह तब चन रहे हमारा अपना जान करो पारा हमरे दोस्त करो चमकाओ आभार दे मुख बचाओ सुखी वसे मोरो परवारा सेव से तारा मोर रक्षा निकाल दे करिए साधारण को आसन करिए पूर्ण होए हमारी आस्था तो इनकी रहे प्यासा तुम्हें छाड़ को अगर न त्याहूँ जो वह चाहूँ तो तुमसे पाऊँ सेवक सुख मारे कारिए चुन चुन सतन मारे मारिए आप हाथ दे मुझे भरिए मरण काल का तार संभरिए हुजो सदा हमारे पश्चा श्री आस तो जो करो रक्षा राख लो मुझे रखन हारे साहब संत साहे प्यारे दीन बंद दुश्मन के हंता तुम उपरी चतर दास कंता काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए श्री तरा काल पाए कर भीषण प्रकाशा शकल काल का किया तुम सा जमन काल जो भी सेव किए देवराज ब्रह्मा जो किए जमन काल साहब जो सुवारा नमस्कार है कहीं हमारा जमन काल साहब व्यक्त बनाए देव लाए जिसमें मिट जाए वो आ ध्यान ते के तारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार ही को हमारी शक वायु में आसवारी शिवकन को सब शिवगुण सुख दियो सत्यम को पल में और पियो कटकट के अंतर की ज्ञान पले बुरे की पिए क्षण चीची से कुंचे रस तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी के सुखी क्षण कट कट के पट पट की जाने जब उठ कर्ख करा करतारा पर जा तब दे पारा जब या कर्ख कर्त हो कब हूँ तुम मैं मिलत जेहता सब हूँ जिते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपने बूझ चारे तुम सब ही ते रहत नीर आलम जान त्रेद देव अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आलम नील नाल संभ ताका मूर चात पिदा जाको पे न पावत विद्या ताको कार पहन मानत महा मूर कष्ट न जान महादेव को कष्ट हुआ सो निरंकार का चीन तुम है तब आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण चंदन तो है जेती तुम्हारा लखन हो जाए सारा के बुद्ध सजा पथ हम संसारा एक रूप में सुपरंक दोरा कही तू पाप अंडर देर से चुकी नी उत्पुर खान बहर रच जी कहो हो राजा वह बैठा कहो सिमट कर शंकर कैठा सगरी शिष्ट दिखाए चंप आद जास रूप सिंप
आवरशा मेरी तुम करो सिखवारो सिख संग्रो दुष्ट जित उठ पाका शिकल मलेश करो रन घाता जे अस्तु तो शरणे परे इनके दुष्ट दुख वह मरे पुरख जबन पग परे प्यारे तिनके तुम संकट उतारे जो कल को एक बात है ताके काल निकट ने है रक्षा हो कहीं सब काला दुष्ट अरिष्ट टे चित काला कृपा दृष्टन कृपा दृष्टन जाए न हर हो ताके ताप तन कुल हर हो सिद्ध सिद्ध कर मऊ सब हो दुष्ट शाह सह सके न कोई एक बार दिन तुम्हें सवारा काल फांस से कहीं वारा जिन्ना नाम तहारो कहा दार दुष्ट दुष्ट रहा खड़के तुम्हें शांत तिहारी आप हाथ दे लो वारी सारा ठोर मोह हो सहाई दुष्ट लो चाई आनंद सहाय राम कली महला तीजा आनंद एक ओम का सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुतां पाया सह सेठी मनवरियां वधाइयां राग रतन परिवार परियां शब्द गावने शब्द ता गावो हरि तेरा मन बसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दूसरा कारना अंगीकार ओ कर तेरा कर सब सवारना सवना कला सुभाष स्वामी सोको मनो भी सारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं का तेरे काटा तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा से सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकी मनोस्या वा दिशा उपनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं का तेरे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर छां सुख मन आए वसया जिन छां सब पजाइया सदा कुरबान कीता गुरु वेटों जिसदियां है वडियाइया कह नानक सुनो संतो सत रो पेरो सचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच छत कस भगे शब्द वजे कला जित करता जिया पंच जूत दवास कीते काल कंट को मारिया तुर कर्म पाया तुजिन को से नाम हर के लागे कह नानक तां सुख हो चित कर अन्ह दवाजे साची लवे बिन देन वाणी लवे वाजो क्या करे बेचारिया तुझ वास समर्थ कोई नहीं कृपा कर बनवारिया इस नू होर थाव नहीं शब्द लाव सवारिया कह नानक लेवे वाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलब कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटता तिनका सब सच्चे सवारिया कह नानक यह आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू देह सो जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनू होर क्या करें प्यारिया एक भरम भूले फिरे दै जिस एक नाम लग सवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना भाणा पावे कह नानक जिसे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे हो कथ की करें कहानी करा करें कहानी कथ केरी कित द्वारे पाइये तन मन तन सासों गुरु को हुक्म मन्या पाइये हुक्म मन्या गुरु के रंग आवो सची बाणी कह नानक सुनो संतो कथो कथ कहानी ये मन चंचला चितराई करे ना पाया चितराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे आ ए माया मोहनी जिन यह परम एक परम बुलाए माया तो मोहनी चिन्ह की जिन ठगी पाइया कुरबान की चाचे जिन मोह मिठा लाया कह नानक मन चंचल चतराई के न पाया ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एक तुम तुझे देखला चले नहीं तेरे नाले साथ तेरे चले नहीं तुस नाल चलाइए ऐसा काम मूल न कीचे जित अंत पुछो ताइए सतगुरु का उपदेश सुनो तू होवे तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जज साहब खेल तेरा क्या को अख बखाने अखें तां बेखे तू सब तू है दिन जल तो पाया
कह नान तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नार मुन जन अमृत खोजे सो अमृत गुते पाया, पाया अमृत गुते पति ने सच्चा मन बसाया। जी जन सब तुझ पाए एक भी फस न आया, लव लोहन का चूका सतगुर कला पाया। कह नान जिसनू आप प्रस्थापित ने अमृत गुते पाया। भगतां के चाल निराली, चालन निराली भगतां केरी, दुखम मार्ग चलना लाभ लो अहंकार ताज पूछना। बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालों ने किए तो मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तलिया हर बासना समाणी। कह ना चाल भगतां च गुज गुण राली, ज्यों तू चलाहे तिव चला स्वामी। हो क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाहे तिव चला जिना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे, जिसनू कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सच्चे साहेब ज्यों भावे तिवें चलावे। यह सोहला सब सदहावा, शब्दो सहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया। ये तिनके मन वसिया जी धुरों लिखिया आया। एक फिरे हैं कनेरे करह गल्ला गली कल न पाया, कह नानक सब सोहला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिनी हर हर त्याया, जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी चाया। पित माता पिता कुटुंब सहित पवित संगत सवाइया, कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन बसाया। कह नानक से पुत जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज न उपजे बिन सहदे सहसा ना जाए, ना जाए सहसा कित सुनियो रहे कर कुमारे। सहसे जीव मरीन है कित समझे तोता जाए, मान तो शब्द लागो हसो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसाद जी सहज उपजे यह सहसा इव जाए। जीहो मैले बहरों निर्मल, बहरों निर्मल जीहो तो मैले। इन्हीं जान जीव आ रहा ये तृष्णा बड़ा रोग लगा, मन मनोदी सारिया बिदा में ना हो। तुम सो सुन है ना ही फिर है जो बेटा लिया। कह नान जी सदिया सूढ़े लागे चिन्नी जान जूहे हारिया। जीहो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों का निर्मल जीहो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी। कूड़ किसोए पहुंचे ना ही मनसा सच समाणी, जानो रतन जिनी खटिया भले से बन जा रे। कह नान जिन मन निर्मल सदा रहे गुरनाले, जे को सिख गुरु से ची सन्मुख होवे, होवे तो सन्मुख सिख कोई। जीहो रहे गुरनाले, गुर के चरण हृदय च आए अंतर अपने संभाले। आप छत सदा रहे पाने गुरवे मन न जाने कोई। कह ना सुन संतो सो सिख सन्मुख होवे, जे को गुत बेमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त न पावे। पावे मुक्त न हो थे कोई पुछो बेट न जाए, नेक जीनी पार न आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाल चार ने सतु सब सुनाए, कह नानक विचार देखो इन सतगुरु ने तुम पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी, बाणी का गावो गुरु के रीवाणिया फिर बाणी। जिनको नर कर्म होवे हृदय तना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारे पाणी। कह नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी च कच्ची सतगुरु वजो होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख बखाणी। हार हार नित करहें रसना, कहा कछु ना जानी। चित जन का हिर लिया माया बोलन पैरवाणी। कह नानक सतगुरु वजो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द तुम है हीरे जी पिजड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा इहो हो समाओ, सब से ते मन मिलया सचे लाया पाओ। आपे हीरा रतन है आपे जिसनू जे उपजाए, कह नान सब रतन है हीरा जो तिलाओ। सिर सख आप उपाय के करता आपे हुक्म बताए, हुक्म बताए आप देखे गुरमुख से बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए, गुरमुख जिसनू आप करे सो होवे एक सुन लिबलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बजाए, सिमरत शास्त्र पुनपा विचार दे तत्ते सार न जानी। तत्ते सार न जानी गुरु वजो तत्ते सार न जानी, तिही गुणी संसार भ्रम सत्ता सत्या रहन बिहानी।
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਂਦਨ ਹਾਲੇ ਲਾਗੇ, ਜਾਗ ਤ੍ਰੇਮ ਦਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕੋ ਮਨੂ ਵੀ ਸਾਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਏ ਵਿਟਦਾ ਤਾ, ਜੇ ਕਨੇ ਹਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲੇ ਆਪੇ ਲਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਟਦਾ ਤਾ, ਸੋ ਕੋ ਮਨੂ ਵੀ ਸਾਰੀਏ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਕ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਤੇ ਖੇਲ ਚਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਲੂ ਸੂਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮਾਇਆ ਮਰਦ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਲੋਕ ਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਚਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਹੇ ਲੋਕ ਲਿਵਲ ਲਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਉਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਾ ਕੇ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਹਸਨੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਹਸਨੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਹੋ, ਲਾਹਾ ਕੱਟੇ ਹੋ ਜਹਾੜੀ। ਕਹਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਤਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਸਨੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਤ ਚਿਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ, ਹਰਸ ਬਹੁ ਨਾ ਤਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹਰਸ ਕਰਨੀ ਪਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਹੋਵੀ ਸਿਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਸੁਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗਨੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗਨੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਨ ਜੀਓ ਪਾਏ ਜਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਇਆ, ਚਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖਾ ਮੂਲ ਚਿਆ, ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗਨੇ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਹੋ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾ ਗੁਣ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗਿਆ ਮੰਦਰ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਰ ਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਿਸਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹਰਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਚੁਕਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਹਰ ਤੁਮ ਮਿਲਿਓ ਪਰੀ। ਹਰ ਵਿਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਵਿਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਗਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵ ਨੂੰ ਮੇਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਲੱਖ ਵਢਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਿਤਨਾ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪਵਨ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹ ਪੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਗ ਨੀਕ ਨਾ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿ ਨੀਕ ਅਨੂਪ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨਿਧ ਸਿਧਾਂਤ ਲਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਹਿਲ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਾਚੇ ਕਰ ਗਾਓ, ਗਾਓ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਸਾਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਚਿਆਵੇ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨਾ ਬਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਟ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਤ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਸ ਤਪ।

पायन आवन जान संसारा, माया मो खुआन मर जमे बारो बारा, मर जमे बारो बारा बदे विकारा, ज्ञान बहोनी मुठी बिन शब्दे फिरना पायो जन्म गवायो।

रंद बैठी दूजे पाए माया मो दुख पाए आव कठे तन सूजे जो कुछ आया सब कुछ जासी दुख लागा पाए दूजे झमकार न सूजे माया जग लुजे लभ लो चित लाए सो फिर साचा सद ही साचा ना ओह मरे न जाए एक रोवे प्रे विछुनिया एक रोवे प्रे विछुनिया अंधी न जाने पर है नाले गुर प्रसादी साचा फिर मिले अंतर सदा संभाले तेरे अंतर संभाले सदा है नाले मन मुख जाता दूरे ये तन रुले लाया काम ना आया जिन खासना जाता है दूरे नानक साधन मिले मलाई परे अंतर सदा संभाले एक रोवे परे बिछुनिया अंधी ना जाने पर है नाले नानक साधन मिले मलाई परे अंतर सदा संभाले एक रोवे परे बिछुनिया अंधी ना जाने पर है नाले। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰੀ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ

बहर बहर अवतार हस्पदी संत के दुखन आर जाय कटाय संत के दुखन जमते नहीं छुटाय संत के दुखन सुख सब जाय संत के दुखन अर्थ में पाय संत के दुखन मत हुए मलिन संत के दुखन सोबते हीन संत के हते को रखे न कोई संत के दुखन तान प्रस्त हुए संत कृपाल कृपा जी करे नाम संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन से मुख पवे संतन के दुखन काब जो लवे संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिगुप जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलाए संत के दुखन सब को चलाए संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संत दुखी का सा को नाय नाम संत पावे तो पीगत पाए संत का नंदक महाताई संत का नंदक किंतिक न पाए संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज तेहीन संत का नंदक दुखी आरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दुख में दुख नाम संत पावे तो उसका पी हुए मोह संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग है संत का दुखी महाहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरा संत की दुख न सुखते डराए संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे तले मिलाए संत का दुखी अदबीते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते चौथा जो सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किस ना अपन भी जापे ही खाए संत के दुखी को अब न रखन हा नानक संत पावे तले उबार संत का दुखी यूं बिर लाए जो जल भी हुन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव की दनी त्रापे संत का दुखी छुटा केला जो गुआड़ तिल के तमाहे दोहेला संत का दुखी धर्म तेरे संत का दुखी सदमिथ्या कहे कीर्त निंद का तुरही पिया नाम जुत पाव सुई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दुर्गय मिले सजाए संत का दुखी सदा से कहे संत का दुखी न मरा न जीवाई है संत के दुखी की पूजा न संत का दुखी उठ चला निराशा संत का दुख न कृष्ण कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पिया कृष्ण मेट कोई नाम ज्ञान सच्चा सोए साफ कट दिस की ओ करना है हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्राप्त की उत्सत करो दिन रात से त्या वो सात की रात सब कुछ बरता है जिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना की लाभ करना है हार दूसर कौन कहे विचार कृष्णो कृपा करे तिस्टा अपन नाम देव डबागी नाम जन से सलोक तज उस्यानक सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आसर मन रखो नार दुख परम पो जाय अष्टपदी मानु की टेक बिरती सब जाम देवन को एक भगवान जिसके दिए रहे अघाय बौन साल गया है मारे राख कह को आप मान कह किसना ही हाथ किसका हुक्म बूझ रखो जिसका नाम राख कंठ पर होए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न ला गया कोय उसत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल नाम पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग सत्संग बिन सब संग चन चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिया हर बिंद हर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर्ग नान को जल मथा बट भागी ते जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तन मंद करे संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पहचान है सुखी ओ सोजी जान है नाम संग जिसका मन माने नान तिने रंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिथी जानो कृष्णा बुझे सात संग हर हर जस कह सर्व लोक ते हर जन रह आन दिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जान की आसत इसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन पूक नानक से न लागे दूप जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डर है जैसा सत ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सी जिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल न किस जन्म न किस मर अपन चलता पी कर आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत राज थाप थाप अब नासी नाही किस खंड तरण तारे हो ब्रह्मांड अलख पे पुरख प्रताप आप जपाय नानक जाप जिन प्रभ जाता सुशोभा वंत सगल संसार उदय तिन मंत प्राप्त के सेव सगल उदाहरण प्राप्त के सेव दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुर का सब जापे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसने कृपा करे वट भाग नाम जप पा विश्राम नाम तिन पुरख उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ कह रंग सदा सदा वसै हर संग सह सुभाय हो वह सो हुए करना हर पछाण सोए
रब का किया जन्मीत लगाना जैसा सा तैसा दिस्ताना जिससे उपजे तस्मा समाये हो सुख निदान उन्हों बने आए आपको आप दी नो मान नान प्रभ जने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभिरता जानन हार जाके सिमरन उदरिया नाम किस बलिहार हस्पति टूटी गंडन हार गोपाल सरजिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तिस्ते बिरथा कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अपना शिप्रा व्यापे आपन किया कछु न हो जिस तो प्राणी लूचे कोई जिसमें ना ही तेरे किस काम गत नाम जब एक हर नाम रूप पांत हुए ना ही मोह है प्राप्त की जो सगल कट सो है धर्मंता हुए क्या को कर वह जब सब किसका दिया दर वह हर सूरज को कहा वह प्राप्त की करा बिना कहता वह जे को हुए बहदा तार किस दिन हार जानेगा वार जिस गुर प्रसाद टूट हो रोग नानक सो जन सदा रोग ज्यो मंदिर को था मैं थमन थे गुर का शब्द मन है समन ज्यो पाखान नाथ चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लग निस्तर है ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुरदर्शन देख मन हो विकास ज्यो महा ध्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बात छो तूर नानक की हर लो चापूर मान मूर्ख काहे बिलाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्राप्त देवनहार और त्याग तुख से चितार जो कुछ करे सोच सुखमान पूला पाए फिरे जान कौन वस साई तेरे संग लपरे रस लो भी पसंद राम नाम जब फिर दे मान नानक पद चिति कर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज विमान लेहु मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद केव संत संचाल अब त्याग देखिया जंजाल तान तन कह सब कोय मुकू जल हर दर कह सोए एहु बापार बिरला बापार है नानक का कह सब बलिहार है चरण साल के तोय तोय पी और साध को अपना जियो साध की दूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा उठ भागी पाई है साध संगर कीर्तन गाय है अनक विघन पे साधु रख हर गुण गाय अमृत रस चख है ओट गई संत दरियाया सर्व दुख नान पे पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवते आधार सर्व धाम जा की दृष्टि माए पूर्व लिखे का लेना पाए साव की तिस्का होकर न जो किस बिन दूसर हुआ न हो जब जन सदा सदा दिन रहने सा तोच निर्मले करने हर कृपा जिसको नाम दिया नाम सो जन निर्मल थिया जाके मन गुरु की प्रतीत जिन आवे हर प्रतीत भगत भगत सुनिये ते लोए जा कह हृदय को हुए सच करनी सचता की रह सच हृदय सतमुख कैद साची दृष्ट सचाकार सच वर्त सच अपासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नाम सो जन सच माता सलोक रूप न रेख न रंग किस त्रैगुण से प्राप्त हिन्न जिसे बुझाए नानका जिस सो वह सो प्रसन्न हस्पति अपना सी प्रभ मन में राख मानो की तू प्री त्याग जिससे प्रेरणा ही किस कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे भी न आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा न दान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाव नानक के मन एहु अनुराव मन सा पूर्ण शरण जोग जो कर पाया सोई हो हरण पर जाकर नेत्र हो तिसका मंत्र न जाना हो आनंद रूप मंगल सब जाकर सर्व जोग सुनिए करता कह राज में राज योग में जोगी तप में तभी सिर्फ इसमें भोगी चाहे चाहे भक्त सुख पाया नाम तिस पुरुष का किन्यांत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगा है पिता का जन्म के जाना है पूत सगल पुरुष अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जनदास नाम त्या वैसे ते गुण में जाको प्रमा जन्म न फिरा वह जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जना वह तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे रंग नाना विद की न विसार प्रभ न सीख अंकार नाना जल करे किन माए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर पंथ बनाए अपनी कीमता पे पाए सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाव जब जब जीवे नान का नाव नाम के तारे सगले जानत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगरे आकार नाम के तारे पुरी सब भवन नाम के संग उतरे सुन सरवन कर कृपा जिसे अपना नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरुष समान समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए से सब भले सत नाम प्रभु का सुखदायी विश्वास सत नाम गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत नित बूझे जे कोय नाम जब ताकी गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मितगत जिसकी सिष्ट तो करना है हार अब ना बूझ करत विचार करते की मित न जाने की अनाम जूत पाव सो वृतिया विस्मन विस्म पे विस्मात जिन बूझे दिशाया स्वाद प्रभ का रंग राज जन रहे गुर का वचन पदार्थ लहे वही दाते दुख कट नहार जाकर संग कर संसार
जन का सेव सोट भागी जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे। सरोप आद सच जुगाद सच है पे सच नानको सी पे सच। अस्पदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार। आप सत सत सतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुर सत सत्य सुनता। बुजनहार को सत सब हो नाम सत सत प्रभ सोय। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या कनक राम तिन मूल पिछान्या। क्या कर दे विश्वास प्रभ आया सत्य अंत स्मरण प्रगटाया। पैसे निरपो हो बसाना जिसके उपजत समान समाना। बस मायले बस गढ़ाई ताको पे न कह न जाय। पूजे पूजन हार विवेक नारायण मिले नानके। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाना संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग। सेवक को प्रभ पर नहारा सेवक की राख है नंकारा। सो सेवक जिस दिया प्रभ तारा नाम सो सेवक सास सास कुमार है। अपने जन का पर्दा ठाक है अपने सेवक की सर पर रख है। अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत रख है ताकि गतवित कोई ना लख है। प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दर्दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मैं कल रख है पसंद कर लश्कर कोट लख है। जिसका सासना काट प्याव ताको रख दे कर हाथ। मानस जतन कर्तव्य पात इसके कर्तव्य व्यर्थ जात। मारा न रख अब न कोई सर्व जिया का रख सोए। काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए पिए मृत्यु मान तंत्र पिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके शब्द ना दृष्ट आया। नाम तहन नाम रूप रंग नाम उसो कर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ता न मंथन नाम है नाम समान। उठत बैठत सोवत नाम को नान जन कैसत काम। बोलो जा सेवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात। करे भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने सुने समाज। जो हुआ हो सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान। किसकी में माँ कौन बखानो किसका गुण का एक न जानो। आठ पाए प्रभ से हजूरे को नानक से जन पूरे। मान मेरे तिन की उठ ले मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पिछाता सो जन सर सुख का दाता। जिसकी शरण सर सुख पावे तिसके दरसा पाप मिटावे। अवर स्यान सगली छाट तिस जन की तुसी वाला। आवन जान न हो भी तेरा नाम तिस जन के पूजो सर पैरा। सलोक सात पुरुख जिन जाने सतगुरु तिसका नाव। तिसके संग से खुद रह नानक हर गुण गाओ। अस्पदी सतगुरु सिखी करे प्रतपाल सेवको गुरु सदा दयाल। सिखी गुरु दुरमुतमल हिरे गुरु बचनी हर नाम चर। सतगुरु सिखे बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते हत। सतगुरु सिखो नाम तन दे गुरु का सिख उड पागी है। सतगुरु सिखा हल पर सवार नानक सतगुरु सिखो जी नाल समार। गुरु के ग्रह सेवक जो रह गुरु की आज्ञा मन में सह। आपको कर कचना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास सेव के कार्य रास। सेवा कर सोने काम ही जिसको उत्प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस करे नानक सो सेव गुरु की मत ले। बीस विश्व गुरु का मन मान है सो सेव परमेश्वर की कत जान है। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाव अनुकबार गुरु को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक है आपने किस परम। सहस्य अनुप ले न जाइए नानक ऐसा गुरु बुट भागी पाई है। सफल दर्शन पेकत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गय गवे। सुनकर वचन का नया गाने मन संतो का संपत्ति आने। पूरा गुरु खाओ जाका मंत्र अमर दिस पे कहे संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसले मिलाए। जे वाय कुछ सतनेक सतपुरुष पूर्ण विवेक। काहू बोलना पहुंच प्राणी गम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदायिता की कीमत किना न पाए। आनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे। सद बलिहारी सदगुरु अपने नाम जिस प्रसाद है सब प्रभ जपने। यो हारस पावे जन को अमृत पी वे अमृत सो होए। उस पुरुष का नाई कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले सच दे सेवको दे। मोह माया के संग न ले मन में राकर हर हर एक। अंधकार दीप प्रकाश से नानक परमो दुख तैसे नाश।

अस्पदी संत नाम मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और पाप सा मीत विसारो चरण कमलित मैं उधारो कर्म कारण सो प्रभ सम्राट दृढ़ कर गहु नाम हर बात ए तन संचो हो वो भगवान सांत जना का निर्मल मान एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंड उठता वै सोता नर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संत प्रीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनुक पावी रोग न जाए रोग मिटा हर अब कदलाए सर्व निदान में हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबोध हर कहना है दैस ताव त्या बैठाए ताको विघ्न लागे कोई जा कर देवस्था हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाप इनसे पूर्ण हो या स्पर्क पाया संप्रकाश चित कर जाए बचाए विनाशी कौन अन काटी जमपासी सत विचार कह जन साचा जन्म मरा सोखा चोखा चा आवागमन मिटे प्रभ सेवा त्याग सन गुरुदेव क्यों रतन जन्म का हो उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूटन हारे सिमर सास वेद विचारे हर की भक्त करो मंदाए मन मन चित नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्यों लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटुम्बर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार हर सस्ती रथ सवारे झूठा डम झूट पा सारे जिन दिए तिस बुझाना बेगाना नाम विस्तार नानक पिस्ताना मूर्खी मातू ले आने भक्त बिना बो डूबे स्याने हर की भक्त करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन मायन जन्म जन्म के किल जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ सुन कैत रहत कत पाओ सार पूछ सत हर को ना हो सह सुबह नान गुनगाओ गुनगाव तेरी उत स्मैल बिन जाए हो मैं बिक फैल ओहे अचिंत वस सुख नान सत ग्रह सर नाम समाल छाड़ चैन सगली मना सत संग पावे सचना हर पूंजी संत करो व्यवहार ए सुख दर गह जयकार सर निरंतर एको देख कौन नान जा कह मस्तक ले एको जाप एको साला है एक सिमर एको मन आहे एक इसकी गुनगाव अनंत मन तन जाप एक भगवान एको एक एक हरे आप पूर्ण पूरे हो प्राद्याप अनक विस्तार एक ते पे एक रात प्राचित गे मन तन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नान किक जाता सरोग फिरत फिरत प्रव्याया पर्या तो सरनाय नानक की प्रवेनती अपनी भक्ति लाए अस्पदी जाचक जन जाचा प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो दूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्याव चन कम सुन लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्टि मां सुखोय हर रस पावे बिरला कोय जिन चा कैसे जन तृप्ता ने पूर्ण पुरुख ने डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध कै संग परे सर नाम सब त्याग अंतर प्रगा संग निर्लाभ पटभागी जपया ब्रह सोय नानक नाम दत्ते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत ले जन को प्रभ हो दयाल सेवक की नु सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पिया जन्म मरण दुख कम गया किच पुनी सरदा सा पूरी राव रिया सत्संग हजूरी जिसका साथ न लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सुख विसर जे काल न पान सुख विसर जे किया जाना सुख विसर जिन सब के दिया सुख विसर जे जीवन जिया सुख विसर जे अगन में राख है गुरु प्रसाद को बिरला लाख है सुख विसर जे दिखते काटा जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरपुरै तत्ते है बुझाया प्रभ अपना नाम जन त्याया साजन संत करो ये काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अब नाम जपावो भक्त पाए तरिये संसार बिन भक्ति तनो की छार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम सगल दुखा हो तना नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाव मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रो पे एक दर सुख होए मन बिकसै सा त्यंत होए भक्त जना के मन तन नाग बिल्ला को उपावे संग एक वसी जय कर मैया गुरु प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभ संत दीन दयाल भक्त पुछल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर प्रपाल आज गुरु कारण करतार भक्त जना के प्राण आधार जो जो जो पैसो हुए पुनीत भक्त पाए लावे मन हित हम निर्गुनिया नीचे जान नानक तुमरी सरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुक्त पाए एक नेम खर के गुण गाये अनक राज भोग बटियाई हर के नाम की कथा मन पहाई वो भोजन का प्रसंगी तरसना जपती हर हर नीत पलि सुकरणी शोभा तनवंत हृदय से पूर्ण गुरुमंत सात संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रकाश सलोक सर्गुण निर्गुण कार सुन सुमाधि आप अपन किए नानका ही प्रजाप अस्पदी जब अकारे कुछ न दिखेता।

0: पापुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन सुमा तब बैर विरोध के संकमात जब इसका बन चेह न जाप तब हर सो को किसे व्याप्त जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मुह का के सोबत परम अपन खेला बरती जा नानक न हर न दूजा जब होबत प्रभ के वर्तनी तब बंद मुख को किसको गनी जब एक हर कम उपार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ से सुभाय तब से तक कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत रह तब कब निडर कब न कट डर है आपन चलता आप करना है रान खा कर गम पार अपना शिशु का अपना आसन कह जन्म बन को का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जन की त्रास का उपष्ट होए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ मंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन मार दे आपन आप आपे चर जा नानक अपन उपापी ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल का हो क्या तोता जय निरंजन नकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिदर लगत कहो कीस जय ज्योत रूपी ज्योत संग समावे तय किसे कूप का तृप्तावे करण करावन करने हार नान करते का नाय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाए तब कवन माए बाप मित्र सुख भाई जय सर्वकला पे प्रवीण तय वेद देव कहा कौचीन जब अपने आप पुरधार तो सगन अप सगन कहाँ विचार जय अपन ऊंच अपना अपने रहते कौन ठाकर कौन कहिए चेरा विस्मर विस्मरे विस्माद नानक अपनी गद्यान हो आप जय छल छेद पेद समाया ऊहा किसे व्याप्त माया आप सुख आप आदेश से गुण का नाय प्रवेश जय के भगवंत से कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपना आप पतिया रहते कौन कता कौन सुन हारा बहु ब्यांत ऊंचे ऊंचा नानक आप सुख आपे पहुंचा जय प्रत्यो प्रपंच अकाल तय गुण में की न विस्तार पापुन तय पे कहावत को नर को सुर बिछावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम व्यापार दुख सुख मान अपमान अंत प्रकार की व्याख्यान आपन के लाभ कर दे कह के संकोचे तो नान की कह जय अवगत भगत तय आप जय पुत्र पासार संत प्रताप दोहू पा खा पे धनी अंकित शोभा अनु बनी आपे कौ तो कर हम चो जा फिर भोग निर्जोग जिस पावे तो सब नाय लावे जिस पावे तो खेल खिलावे बेसुमारो था कन तोला जो गुलाब त्यो नानक दास बोलै तलो जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार नानके को पसरिया दूजा कै दृष्टार अस्पति आप कथा आप सुन हार आपे का विस्तार जस पाय तिष्ट पाए अपने पाने में समाय तुम ते पिन नहीं किछ होए अपन सुस्ता जग पर होए या को प्रभ जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो तुम तसी तत्का बेता नानक सर सिष्ट का जेता जी यंत्र सत्ता कहा दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राकत कोई न मार सो मुआ जिस मनो विस्तार है जिसका जब कहा को जाए सब फिर एक निरंजन राय जी की जुग जा कर सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर हो कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जा मेरे हो व्याप प्रतपाला जी अनुभव पाक जो जो रचे सुख से तिहात जिस पावत इसलिए मिलाए भक्त करे हर के गुण गाय मानव तर विश्वास कर मान्या कर नहा नानक एक जान्या जान लागा हर एक कहना है जिसकी आत्मा बिरती जाए सेवको सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन उसे अहंकार बंधन तोर पे निर्भय रंधन पूजे गुरु के पैर ये लोग सुखिये पर लोग सुहेले नानक हाथ प्रभा पे मेले सात संग मिल करो नंद गुण गाओ पूरा परमानंद राम नाम तप करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तन पाए सो आओ आठ पैर पर पेखो नेरा मिटा ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन छे नानक पल पाओ हर पल दो लो सुबार राम नाम अंतर उधार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसत सच परिखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते बो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगने बैठे तुम्हारे एक अटेक रखो मन माहे नानक भाव नया वे जाए जिससे दूर कहा को जाए उगरे रख नुहार त्याय निरपो जप सकल पो मिटे प्रभ कृपा से प्राणी छुटाए जिस प्रभ राख जिस नाहे दुख नाम जप मन हो सुख चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई ना पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा नानक ताके कार्य पूरा मात पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पे कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सब दर्शन सुंदर हार रूप धन सेवा से प्रवान अंतर जामी पुरुष प्रधान इस मन बसे तो भूत निहाल ताके निक नया अवताल अमर पहे अमरा पद पाया सत संग नानक हर ध्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा दे संत पेटिया नानक मन प्रकाश अस्पति संत संग अंतर प्रभ बीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्री एक कट मायन प्रंग नाना दृष्टा है नौ नजमृत सब का नाम दे में सब विश्राम सुन सुमार अनह तैनात पहन न जाय चार्ज विस्मार किन देखिया जिसे आप दिखाए नान फिर जन सो जी पाए सो अंतर सो बार नाथ कट कट व्या प्रया भगवान तरन माया का प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल वंचन पर्वत है पार ब्रह्म जय सिया गय तैसा कर्म पौन पानी में संतर माय चार कुंड दर्द से समाये इससे फिर नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नान कुछ पाओ वेद प्राण सिमृत में देख सस्य सूर नक्षत्र में एक वाणी प्राप्ति सबको बोले आप डोल ना कबू डोले सर्व कला कर खेल है खेल मोल ना पाए है गुण अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तारे हो स्वामी होत गुरु प्रसाद परम का नाथ नान किन में हो विश्वास सांत जना का देखन सा ब्रह्म सांत जना का हृदय सा धर्म सांत जना सुन सो वचन सर व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी ये रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो हो सो सुख मान कन कराब नहार प्रभ जान अंतर बसे बार पियो नानक दर्शन देख सा मोई आप सत किया सब सत तिस प्राप्त सगली उत्पत जिस पावता करे विस्तार तिस पावता एक संकार अन कला लखी न जाए जिस पावत सले मिलाए कब निकट कर्म कहिए दूरा पिया पाप भरपूर अंतर का जिस आप जिनाए नान तिस जना बुझाए सरपूता वर्तारा सर्व नैना पे कनहारा सगल समग्री जाका तना पंजा सापी सुना आवन जाने खेल बनाया व्याकारी की नी माया सब कह मतलब तू रह जो कुछ कहना सो आपी कहे आ गया आवे आ गया जाय नान जा पावे तले समाय इससे हुई सो ना ही बुरा और कहो कि नहीं कछ करा आप लाकर तू तक नहीं किया पे जाने अपने जी की आप साचारी सब साच ओत पोता कुसंग राज ताकि गत में कहीं न जाए तू सरो तसो जी पाए जिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक यो जान जो जान तिसरा सुख हो आप मिलाए ले प्रभ सोए ओह तनवंत फुलवंत पदवंत जीवन मुक्त हृदय भगवंत तन तन तन जने आया जिस प्रसाद सब जगत राया जाने अमृता है सुहाव जन कर संचित वै नाव आप मुक्त मुक्त रह संसार नानक जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रव्या राधेया पूरा जाका नाव नानक पूरा पाया पूरे की गुण गाओ अस्पदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निष्ठ कर पेक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिन्ह आस नित्या को तरंग संजना के सूर मन मंग आप छोट बेनती करो साथ संग अगन सागर तरो हर तन के पर ले हो पंडार नान गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल साजनंद साथ संग पच परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नान जी का यह आधार उत्तम श्लोक साहब के वचन अमलेख लाले रतन सुन समाप्त हो तो दारा फिर लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुनंद करे प्रभु गा जय प्रकटे गोपाल महात्मे माथे नान कुदरे तिन कह साथे परम जोग सुन करनी आए कर कृपा प्रव्याप मिलाए मिट गए बैर पे सबरे नम्रत नाम साथ संग लैन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेव आग जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रकारी नानक ने भी के पमारी प्रभ युसुत करु संत मीत साव जाने का कर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन मस सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रकट सब लोए तब तो उत्पाय स्थान पर न हो वह आवन जान हर धन खाट चले जन सोए नान जिसे प्राप्त होए केम शांत रिद्ध नाव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप योग प्रत्यान ज्ञान से सुत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मल सकल से उदास सुंदर चतुर्थ का बेटा समदर्शी एक दृष्टिता ए पद से जन कै मुख फने गुरु नानक नाम वचन मन सुने ए हो निदान जपे मन कोए सब जुग में ताकि गत होए गुण गोविंद नाम सुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सगल मतान केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट प्रात साथ संग मिटाय संत कृपा से जम से छुटाय जा कह मस्त कर्म प्रपाय सात शरण नानक से आय जिस मन वसै सुन लाय प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरणता का दुख निवार दुर्लभ दे तत्काल उधार निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माय समानी दुख रोग बिन से पह परम साध नाम निर्मलता के कर्म सबसे उच्चता की शोभा बनी नानक एक गुण नाम सुखमनि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਚਲ, ਖਾਲਸਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗ ਯੁਗ ਪੀੜੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਯੁਗ ਯੁਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪੀੜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਨਾ ਖੋਲ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਰਨਾ ਖੋਲ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਣਾ ਖੋਸਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲਣਾ ਖੋਸਰੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੋਖੀ ਸਦਕੀ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੱਸੀ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਐ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਏ ਨਰ ਚਾਹਤ ਔਰ ਪਈ ਚਿਤਰ ਵਿਤ ਰਹੇ ਉੱਠ ਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹੂ ਪੰਥ ਮੈਂ ਕਪਟ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਬਹੁਰ ਤੀਸਰੋ ਪੰਥ ਕੀ ਜੈ ਪ੍ਰਧਾਨੀ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਚਰਨਾ ਖੋਸਰੀ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਗੋਚਰੀ ਰੱਖੀ ਸਮਝੀ, ਜੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲੇ ਫੁਲੇਗਾ, ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਆਲਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਜੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸੱਪ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੰਡਲੀਏ ਸੱਪ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰਬੰਸ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਾਜ ਆਗ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਇਉਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਕੋਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਸੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਮਨੂਆ ਮਾਤੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਆਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਧੀ ਚਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪਾਣ।

0: दूसरी बार माता जी ने आख्या, उठो मेरे लाल, उठो, वक्त हो गया है। एक पासे सूरज चढ़ा है, चढ़न वाला है, ते दूसरे पासे तुसी खुद भी इस सूरज नालों वध चानन करन वास्ते इस आसमान से पहुंचोगे। उठो। उठाया, मुंह चुमिया, ते नाले मुखातब करके कहंदे ने, तुहानू जान तो पहला मैं अपने मन दे अरमान से पूरे कर लवां, तुहाडे केसां नू कंगा करां, दस्तार सजा देवां, जे इशनान नसीब नहीं तुहाडा मुंह ते तो देवां, क्योंकि मां जदों भी किते बच्चियां नू बाहर भेज दीए, ना जाने दिन विच कितनी कितनी वारी अपने बच्चियां दा मुंह संवार दीए। ते फिर कहन लगे, ये तुहाडे जिहड़े छोटे छोटे सीस ने, मैं इन्हां ते छोटी छोटी कलगी ते लगा देवां। मैनू शौक है, जे वक्त आउंदा ते पता नहीं मैं देखदी के ना देखदी, जदों तुसी दूल्हे बनदे, जदों तुसी लाड़े बन के विआह वास्ते जांदे, ओह वक्त ते शायद दादी नूं नसीब ना हुंदा, पर जेड़े हुण तुसी दूल्हे बनने है ओह मैं अपने हथीं बना लवां। इउं माता जी ने साहबजादियां नूं तैयार कीता और माता जी नूं अंतम नमस्कार करके मथा टेक के माता दी आशीष लै के ओ फिर पहुंचे ने दरबार विच। ते फिर ये फतवा सुनाया गया कि इन्हां साहबजादियां नूं दीवार विच चिणिया जावे। कहंदे ने जिस थान ते उन्हां नूं चिणिया जाना सी, पहला ओहदे ते चूना पाया गया, फिर ओहदे ते कुछ इटां लगाईआं गईआं। अज भी ओ छोटी जी दीवार सरहंद फतेहगढ़ साहब दर्शन बख्श दीए, जिस दे उपर साहबजादियां नूं खड़े करके बरतदाबा तरतीब दीवारां विच चिणिया जाना सी। तो जदों हुक्म मुताबिक हौज दे सिपाही साहबजादियां नूं पकड़ के कहंदे ने उस दीवार ते खड़ा करन लगे, तां उहनां ने इनकार कर दिता ते कहन लगे, नहीं, ऐसा नहीं, असीं आप इकट्ठे इस दीवार उपर खड़े होवांगे और जो हुकूमत ने अपना काम करना है वो काम करी जावे। योगी जी लिखते ने साहबजादे चढ़दी कला वे सन, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़िया होया सी, हाथों में हाथ डाल कर वो दोनों नौ निहाल, ते जदों वो नींद दी तरफ अगां वधे ते उन्हां दी जुबान ते जयकारा सी, हाथों में हाथ डाल के वो दोनों नौ निहाल, कहते हुए जुबान से बड़े सत श्री अकाल। चेहरे पे गम का नाम न था और ना था मलाल, जा ठहरे सर पे मौत के फिर भी ना था ख्याल, जिस तम गले गले वो मासूम गड़ गए, दिन छुपने भी न पाया के कातिल उजड़ गए। योगी अल्लाह यार का कहंदे ने इंज साफ साथियां नूं नींद उपर खड़े करके चिणना शुरू कर दिता गया। जदों नहीं दीवार गोडियां तक आई, हुण गोडे वधीक चौड़े सन, ते राज ने पुछया काजी दे पासों, देखो एक पासे इन्हां दे गोडे ने, एक पासे शाही खजाने दियां इटां हन, जे गोडे तराशदे हां ते ये बच्चे ने, इड सिद्धी पूरी नहीं लगेगी, इठ तराशनी पवेगी, ई हुक्म है। तां काजी ने जवाब विच आख्या सी, शाही खजाने दा इटा, शाही खजाने दा पैसा इटां तराशन दे नाल जाया होवेगा, ए गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र ने, इन्हां दे गोडे ही शाम दिते जां। तां कहंदे ने फिर राज ने तेसी नाल साहबजादियां दे गोडे शहंग दिते। तो कहंदे ने जिस मौके ते छाती तक दीवार पहुंची, तां उस मौके ते दीवार दे भार दे नाल सांस रुकन लगा, शरीर दियां नाड़ियां दा खून रुकने लगा। ते कहंदे ने दोनां ने एक दूसरे नूं कहा, दुनिया दी नज़र विच ते साडे विच बड़ा जुल्म होया है, पर जदों कोई अंतरीवी नज़र नाल देखेगा ते गुरु दे पंथर पर मेरे वाहिगुरु दी बख्शिश होई है। दीवार के दबाव से जब हबसे दम हुआ दौराने खून रुकने लगा सांस कम हुआ फरमाए दोनों हम पे बाजाहिर सितम हुआ पर बातन में है पंथ पर खुदा का कर्म हुआ सात साल और जी के मरना जरूर था सर कौम से बचाना गैरत से दूर था योगी अल्लाह यार खां प्याला थो श्री वाह कहते ने के जदों पहाड़ नाल सरहंद दी दीवार दे जा इयों कहिए जुल्म दे पहाड़ नाल साहबजादियां दा सास साहबजादियां दा दम रुकन लगा उस मौके ते भी ओ कहंदे सन धर्म तो कौम तो पंथ तो सिर बचाना असल विच साडे सोढ़ी घराने दी परंपरा तो बहुत दूर दी गल है ते अखीर राज अपना कम करदे रहे जालिम अपना जुल्म ते सितम करदे रहे फिर कहंदे ने इत्थां चिंदियां चिंदियां ठोडी तक ईंटे चिंदी गई मुंह पर आ गई क्योंकि छाती तो पर गर्दन गर्दन तो पर ठोडी ठोडी तक ईंटे चिंदी गई मुंह पर आ गई बीनी को टांपते ही आंखों पे छा गई नक क्योंकि ठोडी तो पर फिर नक का हिस्सा आ जाता है कहंदे ने ठोडी ईटां विच चिणी गई उस तो बाद नक इटा विच चिणिया गया बीनी को टांपते ही आंखों पे छा गई ते फिर ओ चंद मुख ओ चंद्रमा वर्गा मस्तक दोना साहबजादिया दा हर चांद सी जबीन को घन सा लगा गई लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई चालको श्री इं बाबा अजीत सिंह साहब बाबा जोरावर सिंह साहब बाबा फतेह सिंह साहब जी सरहंद दियां दीवारां विच अपने आप नूं चिणवा के पंथ दे महल नूं सदा लई अमर ते अडोल कर गए जितनियां भी आंदियां आईयां इस महल दे नाल ठुकरा के लंघ गईयां अज भी गुरु दे पंथ दा महल इन्हां आंदियां विच जुल्म ते सितम दे तूफाना विच अडोलता दे नाल अपना सिर उच्चा लैके खलोता है प्याला खो श्री इयों जिस पंथ दी साधना गुरु नानक देव जी महाराज ने कीती सी माता गुजरी जी ने साहबजादियां ने अपने आप नूं दीवारां विच चिणवा के इनू मुकम्मल करके बुर्ज बना दिता प्याला खो श्री हर महल नीयां तो शुरू हुंदा है ते ओदी मुकम्मलता बुर्ज उपर हुंदी है जदों कोई महल संपूर्ण हुंदा है तां ओदे बुर्ज बना दिते जांदे ने सरहंद फतेहगढ़ दा स्थान ऐसा है जिथे पंथ दियां नीहां भी मजबूत होईयां और पंथ दे महल दे मुकम्मल होण तो बुर्ज भी बना दिता गया प्याला खो श्री वाह पर जिवें हजूर कह रहे ने ए मर्दां वाली कोई कम नहीं एक पासे दीवारां विच चिणे गए सन ते दूसरे
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम स्लिक तो प्रसारित किया जा रहा है उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउन लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

हर बात घर बार सारे बंधन बताई है। योनी कर्म तू तारी पिता तारी ब्रह्मचारी ध्यान को लगा वन ध्यान न पाई है। ध्यान को लगा वन

सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी का गावो गुरु केरी, सतगुर बिना

कहूँ देश के पेश के धर्म धाम में, कहूँ राज के साज के बाज ताम में, कहूँ अक्षर के मच्छर के सिद्ध साजे, कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाजे, कहूँ अक्षर के मच्छर के सिद्ध साजे, कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाजे, कहूँ रंग के संग दे के, कहूँ रंग के जंग

कहूँ जट गंधर्व उरग कहूँ विद्याधर कहूँ भैरव हो कहूँ हो के हिंदुआ गायत्री को

जिद के जितैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाथ तीन लोक गाइया कहूं के तनैया है न मैया जाके पैया हूं चौण हो के सिंह कोड़ का रूपी तलाइया साधना सदैया ढूंढ तानी के पदैया तोर ताम के परैया छोड़ का।

सरहदों सीआईडी ने खबर पहले ही दे देते से बंदा सिंह ता लोहे का सुहागा बन के आ रहे है, उसने तेनु बख्शना नहीं शक्ति आ जेड़े ऐसी उन्हां विच सारे सिंह जेड़े जोश इन्ना उन्हां दे विच छड़दे हो जकारे ओ बंदा सिंह बहादुर चप्परचिड़ी दे मैदान विच बैठा है। इस ने बड़ी वड्डी तैयारी है जेड़ी ओ सरहंद विच कीती हुई सी। ज्यों ज्यों नूं खबरां मिल रहियां सन इस ने पुराने समय अनुसार पिंडां दे पिंड सी जेड़े, क्योंकि पहलां फौजां बड़ियां घट हुंदियां सन, जदों किते जंगां युद्धां दा वेला आउंदा उस वेले कहिंदे पिंडां दे विचों वंगार के बंदे आ नंबरदार आ जिहड़े ये लियांदे सन। ते कहिंदे इस ने कहिंदे जिहड़े पुराने जनरल कर्नल सी ना ओह सारे सरहंद विच सद्दे होए से, जहान खान रोहिला, जनरल मीत खान दिल्ली, जलाल खान रड़वाला, जलाल दीन सहारनपुरिया, जनरल गुलाम सूर जम्मू, अलाहाबादी नवाब अमीर खान दे अजी खान लाहौरिये, अमीर खान मुरादाबादिया, अब्दुल्ला खान नारनौलिया, अर्ध समात खान समाओ वाले, ननौता दे तीर अंदाजिए नाहन दा राजा, नजाम दे नैब सूबेदार लाहौर, कानू आनिए कलानौरिये तोप से कमान तेज खान गुलाम मोहम्मद खान गजनी वाले, मेहता भगवंत राय इमरान मीर त्रावड़िए राजपूत, मैया खान मुआरफ खान मोहम्मद खान कन्हार वाले, दीदार खान दिल्ली वाला, वजीर खान फौजदार सहार, शमश खान दुआबिया सरदप्रिय गुजर, रसूलप्रिय सुन्नी भदौरपुरिये भराई, भरौली वाले सैयद हुशियारपुरिये शेख, राजा अजीत सिंह जोधपुरिया, राजा नोह सिंह मेर वाला, राजा आदित सिंह बनेला, कमांडर चीफ नश्तर खान बरोज, अब्दुल समाद का तहरान वाले, इन्ने बंदे आपदियां फौजां दे के सरहंद विच पहुंचे हुए से। जेड़े हिंदू राजे उस वेले दे ओ भी डरदे हुए सूबा सरहंद दे नाल जुड़े हुए सन। चिट्ठी इन्हे कोहे पहुंची है, कहिंदे इन्नियां फौजां इहदे कोले हन पर सूबा सरहंद दा मन आ ना जेड़ा ਉਹ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਊਗਾ। ਮਨ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰੋ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਹਿਲੀ ਅਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ।

मत कितने सर्वेंट कंफ्यूज ना हो जाए, भुलेखे ना पै जाए, बहुते गीतों मत बुझ ना सकन के नानक हुक्म है जे बुझे वाली गल कि सुन।

यूं दोहा बनी तो कमान आमो सामने रख के पढ़ांगे बचांगे समझांगे सारे समय स्पष्ट हो जाए बहुत समय की लोड़ नहीं पड़ी क्योंकि जो लफज उन्होंने पौड़ियों में आ रहे हैं जिड़ी गिनती जपनी साहब दी पौड़ियों पौड़ी में चल रही वो ही गिनती आशा दी वादी पौड़ी में चल रही उसे नहीं चल रही पहवे सिद्ध पीर सुनना पहवे अडाणी आकाश तो ऐसी नहीं हुई चीज चल रही है सुने सिद्ध पीर सुनना पहवे तबला आकाश बिल्कुल वह गिनती बराबर चल रही क्यों चल रही है क्योंकि गल से हुक्म की चल रही है ना पहवे में पहवे उ हों जो सुन इसलिए ख्याल करो सुने का आखिरी अर्थ इतने है उनके पैर होना उस कैटेगरी होना जी शुरुआत होंगी सुने जिन्हें सुने नहीं उन्हें मनिया भी नहीं इसलिए गुरु नानक पातशाह जी ने इस रचना में सुने ते मने नू कहन तो शुरू करके सुने ते मने नू नाल नाल रख दिता चार पौड़ियां सुने दिया चार पौड़ियां मने ताकि सिख नू पता लग जाए कहन वाला एक है जेड़ा हुक्मी हुक्म चलाए रहा उस सारा निजाम हुक्म भी चला गया जेड़ा उनके हुक्म के अनुकूल देखो पिछली गल जोड़ना पसंद करेंगे कि उनका हुक्म नहीं बदलता बदलता तेन कर्म बदल देता है इसलिए तू उदों हुक्म दे विच चलता दिखेगा सुने की पौड़ी सुने के कैटागरी सुने की लैन में उदो खड़ा होगा जदों तू अपने कर्म बदल लेगा उस दिन वाली एग्जाम्पल फिर दे किसी दूजे देश जावे जिस भी देश जिस भी वतन में जावे जिस भी राज सरकार दे बने संविधान के घेरे में जावे उनका संविधान तेरे क्या रोज रोज जेड़ा जाए उनके आख्या नहीं बदलना जिस देश में जाएगा उतों का अपना संविधान तो रोज जेड़ा जावे उन्हें बदल दे ये गल नहीं भी मेरे अनुकूल हो जाए बिल्कुल नहीं बदल तो मैं उसने अर्ज की थी जे कोई इधर खब्बे पासे गद्दी चलांदा जाए उत्थे जाके आखे ने मैनू इधर ही चला दो ये नहीं होगी कर्म बदलेगा तैनू साइड छड़नी पड़ेगी तैनू चलाने का तरीका बदलना पड़ेगा संविधान वो ही रहेगा रब का हुक्म प्रभु हुक्मी जरा वो हुक्म नाल सारा संसार निजाम चला जे तू उनके वतन में बढ़ना है ये खुशी की है उनका वतन बेगमपुरा शहर को नाव की है उनकी मर्जी का सुधार दुख अंधो नहीं तक ना तो शरीर खराब ना माल खौफ ना खता ना तो कोई एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि तू उनके निजम गड्डी चला रहे हाँ जे तू उ जाके खब्बे चलाने की कोशिश करेगा जरूर एक्सीडेंट होगा फिर ना अखी में दुखी हो तेरी सुनी भी नहीं जाएगी जे तू रब की दरगाह संबंध जोड़ना तेनों उनके निजाम से उनके संविधान से उनके हुक्म पछाणना पड़ेगा नानक हुक्म है जे बुझे तो हमें कहने को ते ओ जिहड़ा हुक्म है वो सुनन तो बुझन तक चल शुरुआत होगी सुनन तो इसलिए जिहड़ा मन भी रहा है जिहड़ा उनके अनुकूल भी चल रहा है उनकी निशानी उनकी लाइन उनकी कैटागरी समझ लें कि यह स्रोत है इस सुने की लाइन इसलिए जिन्ना कुछ भी है संसार का जिहड़ा उनके पै विच है वह सुने की लाइन में खड़ा है क्योंकि उनके पैर में उनके हुक्म होना ही इस गल का प्रतीक है कि यह सुने की वैल छड़ा गुरु ने इसे इतने गिनती की सुने लफज में केंद्रीय लफज में जोड़ के की मैं इसलिए की किसी आप इस गल समझ लवेंगे फिर सानू सारी गिनती आसान हो जाएगी समझ की हर एक लाइन नाल सानू दोबारा बार बार सुने

0: उपरंत सीरियल वाइज बाकी दे भगतां दी बाणी अंकित है। इस बाणी दी विचार करन तों पहला आपां उस परिपूर्ण परमात्मा दे चरणां विच हाजरी लवाईए। बदकिस्मती यह है परमात्मा साढ़े बूहे के अगे खलोता पर आप कुंडे भिड़े ने, आप दरवाजा बंद किया है। तो गल उल्टी ना, माड़ा कमजोर मनुख गरीब दुखी तगड़े के दरवाजे अगे जाके आवाजा मारदा तरले करता, भाई बूहा खोल मेरी मदद कर। लेकिन वेखते कि समाज उल्टी रीति है, परमात्मा साढ़े बूहे अगे खलोता तो आप आवाज नहीं देंगे, आप दरवाजा बंद किया। तुसी कहो जी भाई साहब आप दरवाजा कदा बंद किया। गुरमुख धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहते हैं कि दो तख्तियां वाला दरवाजा कुट के टाइट करके बंदे ने बंद किया, रब नाल गल करन दा टाइम ही नहीं। तख्ते किहड़े ने? आस्था अंदेसा दोए पट जड़े। ये साढ़े ते परमात्मा दे दरम्यान एक भेड़िया दरवाजा है, जिस दरवाजे दे करके असीं परमात्मा नाल गल नहीं कर सके, सी परमात्मा नूं वेख नहीं सके। ते दरवाजे किहड़े ने? एक आस्था, दूजा अंदेसा। आस्था तो भाव यह है कि साडे मन में यह बड़ी तीव्र इच्छा है कि मेरे को चार पैसे होण, सोना बंगला होवे, नौकर चाकर होण, मैं अपने रिश्तेदार भाईचारे दे विचों अमीर होवां, सौखा होवां। ते परमात्मा ने अरदास सुनी कि उहदे कोल सारा माल मत्ता आ गया, यह आस्था है। ते जदों प्राप्त हो गया ना, मुड़ के बंदे नूं इस गल दा तौंखला भी मेथों को खोह ना लै, उहनूं कहिंदे ने अंदेसा। इउं गुरमुखो इह आस्था ते अंदेसा दो दरवाजे बंद होण करके असीं परमात्मा नाल गल नहीं कर सके, साडी परमात्मा नाल गुफ्तगो नहीं हो सकी। उन्हां दरवाजिआं नूं आपां खोलण दा यतन करिए, क्योंकि बहुत टाइट ने, बड़े भीड़े ने। उन्हां दरवाजिआं नूं खोलण दा गुरमुख प्यारू इक्को इक तरीका है। जदों दरवाजा बहुता टाइट होवे ना, उदों नाल दे किसे भरा भाई नूं कहिंदा भी तूं वी हत्थ पा, दरवाजा खुलदा नहीं। इसे प्रकार गुरमुख आपां सारे जणे रल के दरवाजा खोलीए, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਗ ਸੂਹੇ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ।
0: ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਰਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਣੋਈਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਂਦੇ ਚਾਹ, ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ